0: in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: मैं थोड़ा अपना वकील वकील ब्रिज मोहन पिछले 32 सालों तो अक्रॉस कैनेडा कार एक्सीडेंट्स लगियां गंभीर सट्टां पुलिस द्वारा लाए गए संगीन क्रिमिनल चार्जेस अते सीरियस इमिग्रेशन केसेस नाल कोर्ट कचहरियां च निजिठण दा साडा पूरा तजर्बा है कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या पर हुण ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਤੁਹਾਡਾ

किताब ओए बल्ले बल्ले क्या बात है, क्या लिखता है यार। 905-673-3333 तुसी जुड़े रहना रेडियो प्रोग्राम उड़ान लैके जुड़ांगे 9 to 10 ते स्टे ट्यून्ड AM 530 सुपर हिट फ्रीक्वेंसी दे नाल। मैं थोड़ा अपना मेजबान प्रभ संधू

सतगुरु होए दयाल ते सरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल नकाबहूं चूरी है, सतगुरु होए दयाल ते दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल ते हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगा नूं माणदे हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम, खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम, रेडियो उड़ान प्रभ संत दे नाल।

कोई भी सामान, चाहे वो ग्रोसरी है, चाहे वो कोई बर्तन है, चाहे कोई औजार है, चाहे गुरु साहिबान नाल संबंधित कोई फोटोग्राफ चाहिदी है, चाहे कोई हिंदू धर्म नाल संबंधित किसी देवी देवते की फोटोग्राफ चाहिदी है या पूजा समगरी चाहिदी है। घर दे विच तुसी पंजाबी थीम उसारना है, कोई विआह शादी है, कोई फंक्शन है, तो तुहानू पंजाबी कल्चर दे नाल रिलेटड हर एक चीज़ तुहानू इत्थों मिल जाएगी। घर दे विच वरती जाण वाली छोटी मोटी कोई दवाई जो फस्ट एड दे तौर ते असी अक्सर पिंडां दे विच घरां च रखदे सी, हर एक दवाई तुहानू इत्थों मिल सकदी है। ईनो, इसबगोल, जन्म कुट्टी, साफी, चंडू बाम, बदाम रोगन, अमृत तारा, कायम चूरन, एलोवीरा, जो भी बरनौल, इचगार्ड, मूव, हर एक चीज तुहानू इत्थों मिल सकदी है। फोन नंबर नोट करो 905-230-4800 9052304800। ब्रम्पटन कैश एंड कैरी पंजाबियों के कॉस्को के नाम नाल जाणिया जांदा, 60,000 स्केयर फुट के फैलिया होया विशाल स्टोर। सो गलबात अज नहीं, फोन मैनू आ नहीं रहा कोई, अज दो तीन फोन ही आए है दोस्तों मित्रों, या तो कोई मुश्किल आई ही नहीं ते या उन्होंने मुश्किलों चुटकी दे विच ही हल कर लिया, तो उन्होंने लगता ही नहीं है कि गलबात शेयर की जा सकती है, क्योंकि अजक जे दोस्त मित्र बच मुंडे आ रहे ना, वो तो चलो उधरों पढ़ लिख के स्टडी वीजे ते आ रहे, उन्होंने तो मुश्किल नहीं आदि। सो जे पहला दोस्त मित्र भैन भरा आए ना, जे अपने बच्चों के आन तो बाद आए, जे इत जिन्होंने अपने बच्चों के सुपन साकार हों देखने दे लिए जे आए, या अपने बच्चों दे बच्चों की हैल्प के वास्ते जे इत आए, जेडे अजकल सीनियर क्लब दे विच सारे दोस्त मित्र मैनू बहुत सारे मिलते हैं, तो मैं गलबात शुरू भी उतों ही की सी कि अज साडे एक दोस्त ने जो फोन आया तो उहदी गलबात का लहजा थोड़ा जिहा इस तरह का सी, तो मैं क्या चलो इस गलबात नू आपां अज विशे दे तौर ते डिस्कस ही कर लांगे। सो तुसी जरूर शेयर करो जे दोस्तां मित्रां भैण भरावां नू कोई इस तरह की गलबात इत्थे कोई मुश्किल आई, वह किस तरह की मुश्किल आई, जे आई भी तो उन्होंने किस तरह का उन्हों का सल्यूशन लभ्या। सो ये गलबात जड़िया चलदिया रहनगियां, ते नाल नाल आपां तुहानू कोई ना कोई गीत संगीत का तड़का भी लाउंदे रहांगे, ते गलबात नू अगे कंटिन्यू फिर करांगे। एक प्यारा जिहा गीत तुहाडे नाल होर शेयर करदा मैं, थोड़ा जिहा लाइनां उहदियां

0: patients in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: जे तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम तो आज ही सानू कॉल करो 647-504-1515.

0: 7998877 sofastudio.ca। थैंक यू जी।
1: पाजी अज घरे तंदूरी बनाओ, पर जो स्वाद तंदूरी बॉयज दे आना वो घरे नहीं बन पाउना।
2: हाय गाइस, एंजॉय करो तंदूरी बॉयज, वेज नॉन वेज स्वादले तंदूरी खाने ले पहुंचो तंदूरी बॉयज।
1: सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देन ते पाओ 10% डिस्काउंट। पाठ जागो अते वेडिंग ले आज ही कैटरिंग बुक करो 9059562111 9054519200। सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशंस।
3: क्या बातें क्या बातें। कहिंदा मैनू टिम दी कॉफी पसंद है ते आहा मैनू नहीं तेनू टिम दी कॉफी पसंद है ते मैनू घर दी चाह, तेनू चंडीगढ़ शहर पसंद है ते मैनू पिंड दा राह। कहिंदा इक्को चीज जो सेम आ साडे विच ओ रूह दी पाक मुहब्बत है, जान तो वध के तेरे लई मैनू खास मुहब्बत है। क्या बातें। हरमन भाई भी ना कमाल कर दिंदा कई बार। हरमन भाई इदा दे शेर भेजदा सवेरे सवेरे, मैं क्या कि कर दिंदा। हरमन भाई का भी मैसेज आ गया, कहिंदा भाजी जुलाई 4 आ, जून 4 नहीं कर लिया, मालको सही, थोड़ी बहुत गलती माफ कर दिया करो। पर परमिंदर जी नूं असीं नाल जोड़ लिया अपने। परमिंदर जी सत श्री अकाल, लंघे हो, की हाल चाल जी?
4: जी रमन जी, सांझा वरसा दी सारी टीम, सारे सुनण वाले भैण भरावां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल।
3: सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। की खबर है पंजाब तों? कल कहिंदे सारे MLA अकाल तख्त साहब विच जिवें जथेदार साहब उन्हां ने उन्हां नूं बुलाया सी उत्थे पहुंचे सी, ते की समां बज्जा जी उत्थे?
4: MLA जे आपां छोटा शब्द रह जाणा, MLA जे आपां इदां कह दईए कि सारियां विरोधी धिरां, सारी सरकार, पंजाब दी सारी सियासत कह लो तुसीं, ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੰਥ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਸੀ। ਔਰ 87 ਦੇ ਕਰੀਬ 117 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 87 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ MLA ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚ

हाँ, क्या बात है। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, सुपर वीजा जां किसी भी तरह की इंश्योरेंस का तुहानूं क्वेश्चन हैगा तां तुसीं हरजीत सिंह जंजुआ जी होणा नाल 647-835-5494 दे उत्ते संपर्क कर सकते हो। जां फिर तुसीं इंश्योरेंस का लाइसेंस लैणा ऑलरेडी लिया होया या काम नहीं कर रहे, है ना, पार करके लाइसेंस रखिया, पता नहीं लगता कितों शुरू करिए, तां तुसीं एक बारी साडी ब्रोकरेज हॉर्नबिल इंश्योरेंस ब्रोकर नाल संपर्क कर सकते हो, मेरे नाल संपर्क कर सकते हो 647-237-3123। हॉर्नबिल इंश्योरेंस ब्रोकर का ऑफिस हैगा जी डिक्सी ते स्टील दे एरिया 215 विलकिनसर रोड के उत्ते। सो रमनदीप सैनी या हॉर्नबिल इंश्योरेंस नाल जाने कि मेरे नाल तुसीं संपर्क कर सकते हो 647-237-3123 दे उत्ते। पी एंड जे स्प्रिंग दे विच बिशिंग अलाइनमेंट किंग पिंग ग्रैवल ते जे ट्रकां दा कोई भी काम है तो तुसीं जे एंड गैरी भाजी नाल संपर्क कर सकते हो 905-459-5533 दे उत्ते। ते जे एंड गैरी भाजी होणी कहिंदे ने 5330 ब्रैडको बुलेवार्ड मिसिसागा नियर डिक्सी ते मैथिसन दे उत्ते स्थित ने। ते एक बार कैंसे कल्चर सेंटर का दोबारा मैसेज दे दिए, सी ए सेंटर दे विच जुलाई 4 नूं, हाँ जी जुलाई 4 नूं कहिंदा साडा कबड्डी कप होना हुण जा रहा गोरा तो आ भाजी ते राणा ब्रैन होना नाल 416-230-4000 दे उत्ते। कोई भी इस रिलेटिड क्वेश्चन हैगा तां तुसीं संपर्क कर सकते हो। उत्थे कहिंदे संगत लई लंगर ते छबील दा प्रबंध पूरा हो जाएगा। जगतार रौके भाजी नाल पलंबिंग दा कोई भी काम हैगा, ड्रेन बंद हैगा जां होर कोई टुटी टॉयलेट बदलनी है, तां जगतार रौके होणा नाल 416-820-93-46-9346 दे उत्ते संपर्क कीता जा सकदा।

0: सच कह जो हंगा
1: चुल्ले ते पकती रोटी सच है
2: मिट्टी जुगदी फसल सच है
1: गुरु दी पानी सच है सतगुर प्यारे सच्चे दी बाह फड़दे हुंदे ने।

0: और थाली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: कोई भी कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर, रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस, जिथे कि मैं भी गड्डियां नूं लैके जाना रिपेयर दे लई। रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे आ, कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल, सेफ्टी सर्टिफिकेशन ऊबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवाउणी आ, स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज्ड डायग्नोस्टिक कम च, स्टील्स एंड मेलनी। रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478

0: यार इना इंश्योरेंसा ने ते तू कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा
1: टॉप फाइनेंशियल लिंक तो जो अपनी बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
2: क्रिटिकल मॉर्गेज आरईएसपी आरआरएसपी विजिटर इंश्योरेंस सुपर वीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे थोड़े कोल 20 नालो ज्यादा ड्राइवर ने ता थानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
1: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 6473031001
2: Yamilo 70 Delta Park Boulevard Unit 11 Brampton
3: Aap Punjabi aa gaya
4: I hu Punjab I hu Punjab
5: IPL chal raha hai only on Karo Stream Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
6: डॉक्टर कुमार लगे हुए नशियां तो मुक्ति दवाउण वास्ते शराब अफीम पोस्त डोडियां दे नशियां तो दूर कर दिंदे हन डॉक्टर कुमार लेडीज़ां दे मर्दां दे गुप्त रोगां दा इलाज डॉक्टर कुमार बुजुर्गां दे मोढे गोडे दुखदे आ भाई डॉक्टर कुमार हर्बल वैगरा भी तुहानू वेचदे आ डॉक्टर कुमार हर तरह दे इलाज वास्ते डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ग्रेटर पंजाब प्लाजा माल्टन गुरु घर दे कोल डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ते कॉल

0: इतना ही है मेरी जान, बस हम तुमको प्यार करते हैं, यही तो पंगा है। हेलो
1: हेलो भाई,
0: सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल
1: ये खान साहब आई।
0: खान साहब

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड इटोबिको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: मित्रां दे जंक्शन ते।
5: ओ केड़े जंक्शन ते?
6: इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते।
4: रात लगियां महफलां रे
6: भाई, महफलां ते रोज ही लगदियां ने। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते, इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते आओ, ताजा स्वादला खाओ ते 100% दी कैपेसिटी वाले शानदार बैंकुएट हॉल विच अपनियां खुशियां दे जश्न मनाओ। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन करदे ने केटरिंग बिग और स्मॉल विद लाइव फूड ट्रक 11 AM to 6 PM, ऑल ड्रिंक्स 50% ऑफ। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते कॉल करो 647-449-4040। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन।
7: एक लाइफ है जिसे लव है,
8: ये कहते मुझसे सब है,
9: अरे एक घर है जिसका ड्रीम है।

0: 530 CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.
1: होलसेल क्लब विच कीमता कट हो रही है हम
2: अल्लाह नालों में कट
1: ए देखो 13.6 किलो सनस्पन स्ट्रेट कट फ्राइज सिर्फ $33 99 सेंट विच
2: ये तो और भी कट है
1: साडे बेसमेंट दे वाईफाई सिग्नल तो भी कट
2: ओए तू किथे जा रही है
1: अपने बिजनेस लाई पैसे बचाओ
3: तो हाडे बिजनेस लाई पैसे बचाना साडा बिजनेस है इसलिए असी कई आइटम्स दी कीमता कट कर रहे हां कोई फीस नहीं और जानकारी ले wholesaleclub.ca देखो
4: wholesale club whole lot of value
5: 32-55-80
1: होलसेल क्लब विच कीमता कट हो रही है हम
2: अल्लाह नालों में कट
1: ए देखो 13.6 किलो सनस्पन स्ट्रेट कट फ्राइज सिर्फ $33 99 सेंट विच
2: ये तो और भी कट है
1: साडे बेसमेंट दे वाईफाई सिग्नल तो भी कट
2: ओए तू किथे जा रही है
1: अपने बिजनेस लाई पैसे बचाओ
3: तो हाडे बिजनेस लाई पैसे बचाना साडा बिजनेस है इसलिए असी कई आइटम्स दी कीमता कट कर रहे हां कोई फीस नहीं और जानकारी ले wholesaleclub.ca देखो
4: wholesale club whole lot of value
0: The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530

0: first या second mortgage या refinance करवाना चाहते हो, तब तो सीधे अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015।
1: टीम सिद्धुला के आए ने कैलडन शहर दे विच द गोर रोड एंड मेफील रोड ते एक नमी मास्टर प्लान कम्युनिटी जेदे विच 2500 तो भी ज्यादा नमे टाउन हाउसेस सेमी डिटैच ते डिटैच कर तैयार होंगे 2027 एंड 2028 दे विच ट्रेडिशनल टू स्टोरी फ्री होल टाउन हाउसेस बट डी बैकयार्ड ते अनफिनिश बेसमेंट दे नाल सिर्फ 7 लाख डॉलर दी रेंज दे विच इन द 700s बहुत जल्द आ रहे ने सेमी डिटैच कर 8 लाख दी रेंज दे विच इन द 800s रिलीजिंग वेरी सून सब तो खास डबल कार गराज वाले बड़े डिटैच कर सिर्फ 9 लाख डॉलर दी रेंज दे विच इन द 900s रिलीजिंग वेरी सून पब्लिक रिलीज तो पहला बेस्ट लॉट एंड लॉट कॉर्नर लॉट दे लई जल्द तो जल्द संपर्क करो एट 416-302-0016 416-302-0016 416-302-0016 Kelden Shahar de vich the Gore Road and Mayfield Road te 2500 to vi jyada ghar taiyar ho rahe ne 2027 and 2028 de vich call team Sidhu 416-302-0016

0: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਰਗੇਜ ਜਾਂ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਮੋੜੋ 1200 ਡੈਰੀ ਰੋਡ ਈਸਟ ਯੂਨਿਟ 22 ਮਿਸਿਸਾਗਾ 416-804-2015 416-804-2015 Simply Indian brings you all simply delicious deals. Buy one, get one free every day. Sure 10 to sham 7 baje tak on dine-in and takeouts. Maza lavo Sunday no paratha plate. Monday, manpasand kulcha plate. Tuesday, chana bhatura. Wednesday, lajawab veg thali. Thursday, yummy haka thali. Friday, maza lavo saag makki di roti da. Hey, yummy deals are Simply Indian. This sariya hi locations se. Dining, takeout and catering also available. Call at 905-794-8111. Simply delicious. Matlab, Simply Indian.
1: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
2: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस दे सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
3: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते
1: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउंगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
4: हेलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
5: टुडे विच लाइव गलबात करन लई हुने कॉल करो 905-564-6444
4: 905-564-6444
5: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो चलो AM 530 तो

0: Illegal trucking is not just an industry problem. It puts our families and economy at risk. Rogue operators are putting untrained drivers behind the wheel. They dodge taxes, exploit vulnerable workers, and force honest carriers to pay the price. Join us in demanding real enforcement, real accountability, and real consequences for lawbreakers. Unsafe trucks don't stay in one province. They travel the highways that keep Canada moving. Brought to you by the Canadian Trucking Alliance's Stop Illegal Trucking campaign. Visit stopillegaltrucking.ca for details.
1: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
2: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
1: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
2: तुम्हें ये सब कैसे पता?
1: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
2: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
1: saveonenergy.ca/eap
3: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.